0: आपकी खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफे का सिलसिला जुमेरात को जारी रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि उसने मुसलसल छठे दिन ईरान के खिलाफ ताज़ा हमले किए हैं, जबकि उसने बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी हुई है। रॉयटर्स ने बताया है कि तेहरान ने यमन में हौसी बागियों से कहा है कि वो बुहैरा अहमर के तेल का रास्ता बंद करने के लिए तैयार रहें। इस रिपोर्ट में मुतअद्दद ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया है कि तेहरान ने मस्कूरा ग्रुप से कहा है कि अमरीका की जानिब से ईरानी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में वो आबनाए बाबुल मंदब को बंद करने के लिए तैयार रहे। आबनाए हुरमुज में कशीदगी ने बुहैरा अहमर के रास्ते को खित्ते से तेल की तरसील के लिए एक अहम मुतबादल रास्ता बना दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने स्टूडेंट वीज़ा पर क़याम की मुद्दत को 4 साल तक महदूद करने के लिए एक नए ज़ाब्ते का ऐलान किया है। फ़िलहाल तलबा को आमतौर पर उस वक्त तक अमरीका में रहने की इजाज़त है जब तक कि वो कोर्सेज में दाखिला रखते हों। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने जुमेरात को इस ज़ाब्ते की इशाअत का ऐलान किया। महकमे ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद गैर मुल्की तलबा की तादाद में नुमाया इजाफे के साथ साथ कई दहाइयों तक मुल्क में रहने के लिए ऐसे वीज़ों के इस्तेमाल के वाकयात से निमटना है। शिमाल मशरकी जापान के एक शहर में लोगों ने अच्छी सेहत की उम्मीद में एक मकामी देवता को खीरों के नजराने पेश किए हैं। क्यूरी तेन्नो त्यौहार हर साल 14 जुलाई को फुकुशिमा प्रिफेक्चर के सुकागावा शहर में होता है, जो खीरों की पैदावार के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस त्यौहार की तारीख तकरीबन 260 साल पुरानी है। रिवायत के मुताबिक जब इस इलाके में ताउन की वबा फैली तो लोगों ने एक देवता को खीरों का नजराना देकर खुद को इस बीमारी से बचा लिया। मंगल को बहुत से लोग सड़क किनारे कायम एक नज़रगाह पर गए। उन्होंने 2 खीरे पेश किए और बदले में 1 वसूल किया। बावर किया जाता है कि इसे खाने से आने वाले साल के लिए अच्छी सेहत यकीनी बनती है। शहर की एक 90 साला रिहायशी ने कहा कि वो दुआ करती हैं कि सेहतमंद रहें। उन्होंने खीरे खाने को भी अपनी सेहत का राज करार दिया।
1: और सामीन, आखिर में आज की खास खबरों का खुलासा सुन लीजिए। जापान ने शाही ख़ानदान के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पार्लियामान ने एम्पीरियल हाउस कानून पर नज़रसानी करते हुए शादी और गोद लेने दोनों से मुतालिक शिकों में तरमीम करने के लिए एक बिल मंजूर किया है। ये 75 साल से जायद अरसे में इस कानून के बुनियादी ढांचे पर पहली नज़रसानी है। जापान की पार्लियामान ने कौमी परचम को नुकसान पहुंचाने के अमल को काबिले ताज़ीर बनाने का बिल मंजूर किया है, जिसके तहत जुर्म करने वाले फ़र्द को 2,00,000 तक येन तक जुर्माना या 2 साल की सज़ा हो सकती है। एक नई जापानी कंपनी बड़ी अमरीकी कंपनी एनविडिया के जदीद तरीन चिप से लेस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से इस्तेफादा करते हुए फिजिकल एआई के लिए बुनियादी टेक्नोलॉजीज तैयार करेगी। खबरें ख़त्म हुईं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान ने शाही घराने के भविष्य को नया स्वरूप देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। संसद ने शाही घराना कानून में संशोधन करता विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें विवाह करने और गोद लेने से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। करीब 75 वर्षों में ये इस कानून के मुख्य भाग में पहला संशोधन है। शाही घराने में इस समय सम्राट नारुहितो और 15 अन्य सदस्य हैं। मूल कानून के अनुसार शाही खानदान से बाहर शादी करने पर महिला सदस्यों को राज परिवार छोड़ना पड़ता है। ऐसी आशंका है कि एक दिन सम्राट के आधिकारिक कर्तव्य निभाने में सहयोग के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं बचेंगे। एक अन्य मुद्दा शाही गद्दी का सतत उत्तराधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के अनुसार राजगद्दी पर शाही घराने में पैतृक वंश की पुरुष संतान का ही अधिकार है। इस समय केवल 3 सदस्य ही इसके योग्य हैं। नए कानून के तहत महिला सदस्य विवाह के बाद भी शाही परिवार में बनी रहेंगी। नया कानून शाही परिवार की पूर्व शाखाओं के पैतृक वंश के पुरुष वंशजों को गोद लेने की अनुमति भी देता है। ऊपरी और निचले सदन की समितियों में एक पूरक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। इसमें शाही घराने के सदस्यों की संख्या बढ़ने के आधार पर सतत उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के तरीकों का निरंतर अध्ययन करने का आह्वान किया गया है। जापान की संसद ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी सहित डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल तथा सानसेइतो पार्टी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। इस कानून में कहा गया है कि ये ध्वज एक मूर्त वस्तु है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ध्वज को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने जैसी हरकतें जिनसे काफ़ी बुरा लगे या रोष उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,230 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन ना हो, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। जापान की एक नई कंपनी नोएत्रा का कहना है कि वो अमरीकी सेमीकंडक्टर दिग्गज एनवीडिया के नवीनतम चिप्स से लैस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए फिजिकल एआई की बुनियादी प्रौद्योगिकी विकसित करेगी। फिजिकल एआई आसपास के माहौल को समझते हुए स्वायत्त निर्णय लेकर रोबोट और अन्य प्रणालियों का संचालन करती है। इसे श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे विनिर्माण क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में अपनाए जाने की उम्मीद है। सोनी ग्रुप, सॉफ्टबैंक, एनईसी, होंडा मोटर और अन्य प्रमुख कंपनियों ने स्वदेशी एआई विकसित करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर नोएत्रा की नींव रखी थी। नोएत्रा उन इकाइयों में से एक है जिन्हें जापान के उद्योग मंत्रालय ने फिजिकल एआई का एक स्वदेशी बुनियादी मॉडल विकसित करने की परियोजना के लिए चुना है। ये परियोजना 380 अरब येन यानी $2.34 अरब से भी अधिक मूल्य की है। अगले साल मार्च में समाप्त होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ये परियोजना शुरू हो जाएगी। मंत्रालय वित्त वर्ष 2030 तक के 5 वर्षों में 10 खरब येन यानी लगभग $6.15 अरब की सहायता भी प्रदान करना चाहता है, जिसका एक हिस्सा इस वित्त वर्ष में आवंटित किया जाएगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका और ईरान के बीच बृहस्पतिवार को भी तनाव जारी रहा। अमेरिकी केंद्रीय कमान का कहना है कि उसने लगातार छठे दिन ईरान पर हमले किए और समुद्री नाकाबंदी भी जारी है। रॉयटर्स ने बताया कि ईरान ने यमन में हूथी विद्रोहियों से लाल सागर तेल मार्ग बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। खबर में कई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने हूथी गुट से कहा है कि अगर अमरीका ईरान की विद्युत अवसंरचना पर हमला करता है तो वो बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद करने के लिए तैयार रहे। हॉर्मूज जल डमरू मध्य में तनावपूर्ण स्थिति के कारण लाल सागर मार्ग इस क्षेत्र से तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बन गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक नया नियम घोषित किया है जिसके तहत विदेशी छात्र वीजा पर अधिकतम 4 साल ही अमरीका में रहा जा सकेगा। वर्तमान में छात्रों को आमतौर पर तब तक अमरीका में रहने की अनुमति होती है जब तक वे छात्र होते हैं। गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इस नियम के जारी होने की घोषणा की। मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव विदेशी छात्रों की संख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि और ऐसे मामलों को देखकर किया गया है जिसमें छात्र दशकों तक अमरीका में रहने के लिए अपने छात्र वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर जापान के एक शहर में लोगों ने

0: अच्छे स्वास्थ्य की कामना में एक स्थानीय देवता को खीरे चढ़ाए हैं। फुकुशिमा प्रीफेक्चर के सुकागावा शहर में खीउरी तेन्नो उत्सव हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये शहर खीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस उत्सव का इतिहास लगभग 260 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में प्लेग महामारी फैलने पर लोगों ने एक देवता को खीरे चढ़ाए थे, जिससे वे बीमारी से बच गए थे। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर बनी एक वेदी पर आकर दो खीरे चढ़ाए और बदले में एक खीरा प्राप्त किया। माना जाता है कि इस खीरे को खाने से आगामी वर्ष में सेहत अच्छी रहती है। शहर की एक 90 वर्षीय निवासी ने कहा कि उसने स्वस्थ रहने की कामना की। उसने बताया कि उसकी सेहत का राज खीरों का सेवन है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की संसद ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को दंडनीय बनाने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊपरी सदन के पूर्ण सत्र में इस विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी सहित डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल तथा सानसेईतो पार्टी ने संयुक्त रूप से पेश किया था। इस कानून में कहा गया है कि ये ध्वज एक मूर्त वस्तु है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें कहा गया है कि ध्वज को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने जैसी हरकतें जिनसे काफ़ी बुरा लगे या रोष उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में 2 साल तक की कैद या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,230 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि कानून को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन ना हो, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।